0: ओए माँ,
1: पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। वंडरफुल सॉन्ग, थैंक यू सो मच रूपा रूपा राम फॉर दैट रिक्वेस्ट। एंड आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम रितु शेखावत सेइंग दैट शी आल्सो रियली रियली लव्ड दैट सॉन्ग, सच मेरे यार है, फ्रॉम द मूवी सागर। एंड थैंक यू रितु, थैंक्स फॉर दैट मैसेज। आई रियली लव गेटिंग मैसेजेस फ्रॉम यू ऑल। द थीम टुडे मॉर्निंग इज हिंदी फिल्म सॉन्ग्स विथ रीजनल टैलेंट, विथ रीजनल आर्टिस्ट्स। Could be an actor, a director, music director, a singer, a film producer, maybe the film itself, which is a inspiration from the regional film industries in India. So the next request is from my sister in Memphis, Tennessee, Indrakshi Dubey. Indrakshi, we call her Minnie. Thank you so much for tuning in all the way from Memphis, Tennessee, and of course, KABF.org is the website. You can go from any of your device, any including your cell phone, which is always there with you, and click on that listen live button and listen live this radio program, which comes to you every Saturday morning between 7 and 9 a.m. Central US time. Mini Indrakshi Dubey from Memphis, Tennessee, here is your request.